क्रॉसम के 100.8 मेगाहर्ट्ज पर आज भी सितंबर 1945 से वर्ष तक मार्च 2023 तक 11 मई 2023 सुबह के 5 बजे

करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन क्षेत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृतसर में शामिल होंगे। प्रथम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे।

médico quando ele tem secretário de marketing financeira, quando eu pergunto परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाए गए चला गया तुर्की ब्रिटेन आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन ने भारतीय दूतावास से कहा है कि हमारे दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित है और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि नाटो या जर्मनी के साथ यूरोप में परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन

me

opération service, vous venez sur

ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज का चिंतन।

करते हैं। प्रस्तुत है घरों का के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस भाग एक। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत कविता श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार है गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे कार्यक्रम धीरे दूसरे गीत और 7:01 पर हम है राही प्यार के।

आपका कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम संगीत होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे का समय है। सितारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम दिन में 1 बजे और दिन में 2 बजे कार्यक्रम जुड़ेंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 बजे सितारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा थैलेसीमिया की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 3:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदा सिंह जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनाया जाएगा। रात 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और रात 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये की जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

सेवा देश की शुरू घर कन प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस

Thank you.

0: श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विभूति कल्पना जोगरकर। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। श्रोताओं, आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की नौवीं एवं अंतिम कड़ी,
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम तूफान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोगरकर पर। कल्पना जी, आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजूमदार जी, जो बहुत उत्तम गायक थे, और उस्ताद रजवली खान साहब के पद के शिष्य थे, तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी संगीत विषय पर, और अलग अलग जिलों से संगीत को जानने का मौका मिला। और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी। मेरे पिताजी ने

0: तमीज हमें वो आए, हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। और उनके से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया, इसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई, ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया, बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावा भी व्यक्ति कैसे की जाए, किस शब्द को किस तरह से किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और मुझे हालांकि जिसे भी मार्गदर्शन मिला, हैदराबाद में थी मैं, मेरा विवाह होने के बाद तो उनके कॉम्प्लेक्स में आने के बाद उनसे भी मैंने कभी बंदिशें अलग अलग प्रकार से सीखे और सिखाए, तो इस तरह देखा जाना। और फिर कुछ समय बाद, अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रखी हैं?
0: कई बंदिशें मैंने तैयार की हैं, इसमें कि आज आपके सामने ही हम प्रस्तुत करेंगे।
1: जी जी,
0: कुछ ठुमरियाँ तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है।
1: जी,
0: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं, इनमें भी मुझे बहुत रुचि है, क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ। उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं, या उसकी छाप उस गायकी पर है, तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है, तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं।
1: तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई है, क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी। तो राग हिंडोल ये कल्याण घाट से उत्पन्न होता है, इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियाँ हैं वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है, तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। तो साल में ये मध्य लय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत।

0: होगा ये जो बंदिश थी जिससे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की टींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही है, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें। बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। चलने से पहले अपने साथिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। कल्पना जी आपने श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में

0: सोनौने जी ने, यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
0: कल्पना जी, आपने श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिश में श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थी गायिका विदुषी कल्पना टोकरकर। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। गायन सहभाग रहा अनुजा ढोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुँचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सुंदर और किरण बन, संपादन सहयोग झरना सोलंकिका और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 10 साल जयपुर में थिएटर किया तो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। सीन का जवाब नहीं इसलिए मुझे इसके तरह से इन चीज़ों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। मेरे पास धारी कितनी उड़ान माफी है, परिंदे में जान माफी और जब भी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

1965 इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत

BPU

0: लेकिन ये रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हरी सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: मुझे बिक्री बीच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धरती के संगीतकार वसंत देसाई।

मुख्य कार्यक्रम हम हैं राहुल के आपके किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना सुनिए। आदि वर्मन का संगीत, फिल्म का नाम घर।

पूरे भारतीय पर कार्यक्रम जारी है। हम सुन रहे प्यार के अगला गाना सुनते हैं। बनफूल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेवाल।

0: प्रधानमंत्री देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: किसी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा की
2: इंदिवर के बोल संगीत है उषा खन्ना का।

0: जयपुर में थिएटर किया, वो एक कुलरपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। ठीक है, जॉब मिले मुझे इसके तरह से इन चीजों को हमार दे और साकार करने का अवसर दिया। मेरे पढ़ा जारी कितने उड़ान बाकी है, स्वर्णिम ने उड़ान बाकी, और जब जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।

हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोयल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगे। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।

Grazie a tutti.

बंगाल में कांग्रेस और भाजपा

kuvan lainnepäin ja laittamaan. Mutta sitten

मार्केटप्लेसेस और सुविधा सुविधा के लिए रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के छोट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर

यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

बाद यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, एक दो तीन चार की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है।

दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चले, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

जैसे आगे बढ़ते हैं रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की

0: Who does that believe about it? He's saying, he believes to believe God has his body.
1: जो सीट का प्रॉब्लम है बहुत मेजर है. अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस से तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी चिल्लाकर भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो. अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए. बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गॉज से करना चाहिए. इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए. ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए.

कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको छोड़ जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन

Thank you.

प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को ये दिन मनाया जाता है। 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक जो परमाणु परीक्षण याद में ये दिन मनाया जाता है और इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल जिस परीक्षण में वक्त होगा

तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, प्रत्येक वर्ष 11 मई को यह दिन मनाया जाता है। राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक जो परमाणु परीक्षण किए गए उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। 11 मई 1999 को पहली बार ये दिन मनाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना है और इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को याद करते हुए उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके इस दिन को मनाते हैं। तो आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। चलिए अगला गाना सुनते हैं, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इस फिल्म का गाना ज्योतिका टांगरी और कीर्ति सरगठिया की

कार्यक्रम का अगला गाना शीवी फरहाद की तुम निकल पड़ी। इस फिल्म का गाना है ये, के और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, अमिताभ बच्चन।

0: कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: एक भारतीय परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, अच्छी से जॉब दी जिसने मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया। मैंने पढ़ा मैंने कितनी उड़ान भरी, परिंदे में जाना थी, और जब जिस भी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

0: là sạch sẽ đưa đến tình hình sức
1: खुला हुलुहान दिल को मिलता है इशारा चारों संदेश हम लेते हैं

15 mira, desde parte para राउडी राठौर फिल्म का ये गाना कुमार सानू, श्रेया घोषाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, संगीत साजिश का दिखा।

0: करें, पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए
1: ज्यादा बातें ये कार्यक्रम
0: और प्रोग्राम की सुविधा हो सकता है आपको हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे ऐसे हैं कि उनको प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 सेलेक्ट पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।

0: prvi se Božjar od srce dodare tebe, one drme od dostone, zatim nam se dana za srca.
1: Oči se vas i vas, ne samo da se ne izli, uvi si za sve, one
0: i te kao pa, jedni na tome, o, a da se ne izli, čezve di kaja za sve. Uz gređušen tebje, one, uvi, vičur za lezen za prvo ona pra. Jedni prvo, se te hrát večeře, master's degree case padají za ty hry, spinky or humory. Sadašu Amra Purkar Jabra Vajhati ke spůli aje thi, onhone apne is acting ke silsile ke zvete karte hue bataya tha, sunte hain onhne se.
2: Aur jaise main college mein aaya, to hamare college ki ek parampara rahi hai. Hamare college ki gathering mein one act play competitions hoti hai. Aaj bhi chal rahi hai wo, aur bahut achhi cheez hai. उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो बनाते करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें था। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर कोरमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो यही आदर्श मेरे सामने था। तो पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेज कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काइट को अपने लिखाई किया, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: जो अमृत होती है महाराज की नाटक हम सब में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी की अदाकार अविनाश मसुरेकर और भक्ति गौरी जो बाद में भक्ति गौरी इस नाटक को जिसका जाने माने निर्देशक गोविंद निर्लानी ने की सदाशिव अमरापुर सर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निर्लानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपने सर्व अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामाशक्ति का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुर सर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली सुनते हैं उन्हें की जुबान।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हम सब नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक क्रिकेटर लिख रहे थे, उसका नाम था सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसम नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, उस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने कहा ये क्या रोल है, मैंने छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ए बी सी डी मालूम नहीं,

विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी वार्ताओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत

0: ने सन लाइफ को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुर कल्पुर। इस कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नागपुर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, परिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुर का धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी, इस फिल्म में उन्होंने एक सहज के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देखिए मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी।

नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे,

0: बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्खू पई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टिकट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जो बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आए। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये बदमाशों को यही एक दुकान मिले रुकने के लिए? आपकी दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा अच्छा, आ गया हसमुख, आ गया हसमुख, ए हसमुख हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होली को कौन डाल सकता है, लेकिन तुम इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आज ही तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
2: आज ही तुझे कुछ
1: पागल हो गया
2: भगवान ने पगल होने से बचा लिया।
1: कैसे

जो अब्रा पुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं

सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज आज के इस स्पेक्ट्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें

चाहिए क्रिश्चियन केंद्र का जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शुभ इजाजत। नमस्कार।

un sitio di guardia.

तो भाभी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये क्या बोल सकता है? बेटा बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने,

ações em todo por causa de Deus.

0: Señor, para decirte grandiosamente que estamos a través de lo que es el Espíritu.
1: Para tu alegría,
0: उपभोक्ता उसका स्वागत करता है देखकर और अब तो आप घर जाकर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाश वाणी के किसी भी क्षेत्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाश वाणी के विभिन्न चैनलों पर

por Deus, de verdade, que

0: Es ein Mensch. माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए जो सुझाव देना चाहते हैं उसको पक्ष आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1800
1: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर।

करता था। और दोस्तों बता दें कि कोई के बारे में ये जानकारी कि यह भारत की निवासी नहीं है, वह सिंगापुर से प्रवासी के तौर पर अपने

अभी तक फिल्म का सीरियल क्या है ये फिल्म का कैसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत रविंद्र जैन का था। और दोस्तों छोटा महीना की बातें पूरी हुई, अब पति है कि तुकार सुन

तो अभी आप जब जब फूल खिले का गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी और नंद की आवाज में, आनंद बख्शी और संगीत जी आनंद जी का साथ। और दोस्तों बुलबुल के गीत के बाद

तो अभी आप फिल्म स्टोरी को भी क्या यही लता मंगेशकर के कलेक्शन रहते हैं, गीत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन प्रसाद। तो देखो कि हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, स्वतंत्रता का संदेश देते हैं, पक्षियों की रक्षा करना हमारा दायित्व है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के संकेत है। आकाशवाणी जनसंख्या की ओर से विश्व प्रवासी पक्षी।

कार्यक्रम गाने पुराने ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। सुबह 10:59

कलापों से भी बच्चों को जोड़ा जाता है ताकि उनकी एकाग्रता बढ़े और वे हर काम में अच्छे से फोकस कर पाए। समर कैंप न केवल मस्ती का जरिया होता है बल्कि ये बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को निखार

में है। डॉक्टर ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि बच्चे को ड्राइंग पसंद है और आप उसे डांस क्लास में डाल दें, बच्चे छुट्टियों में ना तो ड्राइंग कर पाएंगे और ना ही डांस सीख पाएंगे। इसलिए बच्चे को उसके रुचि के ही किसी एक्टिविटीज में रखें।

में कंसंट्रेशन की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है और बातें फिजिकल ग्रोथ की है तो स्किन की जान भी बताती होता है और जिससे केवल फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होता बल्कि

सकता है। ऐसे में बागवानी एक ऐसी चीज है जिसे करने से फिजिकल साधना से मेंटल स्ट्रेस भी दूर हो सकती है। तो इस समर सीजन आप अपने बच्चों से बागवानी करवा सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें घर में ही पौधे लगा

0: जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय

का वर्तमान भव्य मंदिर जो पुनर्निर्मित है उसका लोकार्पण 11 मई 1951 को किया गया था और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। और दोस्तों आज यानी 11 मई 2026 को इस ऐतिहासिक पुनरुद्धार पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ मंदिर में भव्य उत्सव मनाया

some of megahertz बिल्कुल करते हैं कि वे कितना सुन है दिन के 12 बजने को है। इसी पर तो मेरी खास समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के लिए।

0: को कम करके विश्व मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की शिक्षा जारी है। मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौती आई है हमें उन चुनौतियों को पास करना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए देशों में शादी कार्यक्रम सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारत के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की दिल्ली की लगातार सरकार होगी। गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ भवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार श्री आचार्य श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। मृतकों में से पांच गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और राज्य में खराब मौसम स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए अधिक सजग अनुमान है। फुटबॉल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2025 का ला लीगा खिताब जीत लिया है।

कि जैसे आदमी एकदम रोते चले। इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा आगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ।

के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबादत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दो कि इबादत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट किए भी है, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो, उसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूँ ये इबारत आपके लिए। सुनीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पर यहाँ तो उस पर वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सके

श्रोता इन इन जो जो जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी है उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सके। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ कैरी कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जो बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाजा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफर की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से किशोर कुमार की।

0: आकांक्षा रहती है, 25 आकांक्षा किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। करने वाले तो कुछ लीडर ही रहते हैं जिन निर्णयों को लेते हैं, नेता ही रहते हैं, उनके माथे पर यह आरोप आता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
1: महासचिव और वाइस चांसलर

राजधानी रांची के गोगर स्थित पुरहतोली से 18 मार्च

समाचार।

कर रहे हैं। वहां से कोशिश कीजिए कि

0: सुबह कुटुम्बकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश,
1: एक खुशखबरी, सही है ना? आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

है, उसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित दाना हो रहा है, पर बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने लगे तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग प्रयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है या फिर तैयार या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है या फिर जिसका ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनाते हैं ये अगला गीत जो कि है, आपने सही कहा, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। Well, keep saying that

अलग अलग तरह की टिप्पणी आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया, जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि मेरा नाम दुर्लभ है। देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए कोई मजाक की बात है। मेरे सफर में नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी, मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी एक थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो वो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी, या वो चुप रहे तो मेरे दिल की दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है, वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग ने

church, but don't think you've met a beast.

की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जाए, मगर दोस्ती का नियोजन कभी न करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए जीजिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं। गुजरते दिनों के साथ

विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02-2400-2462। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: यहाँ देख रहा हूँ विलास में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ

0: महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियाँ भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इसमें वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोविंद सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राज्य आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 दिन के अंदर पूरा के पूरा जमीन NHA को ट्रांसफर करेगा। BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों

0: सामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेम लता, विजयकांत, सौम्या, अंगुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम की गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।

0: करते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से देश की मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अब भी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान

0: पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से
1: लें।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में

समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर आज दो मादा टीका को छोड़ा। ये दोनों टीके इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 टीकों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में टीकों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल न्यूज को फॉलो कीजिए। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लिखा है साहिर लुधियानवी ने बोल, साहिर लुधियानवी और संगीत है हेमंत कुमार का।

city. KRG. City. Rigid party boat. असली नकली इस फिल्म का गीत तो मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

और सदा बाहर लगने कार्यक्रम से इस गीत

से पिछले 2 वर्षों से

God's existence

c'est le plus de

beauty, huh?

करके पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी लोग चबाते रहते हैं गर्मी के मौसम में। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से भी झाग आ रहे होंगे और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी अस्वस्थता का कारण यहाँ तक की मौत का कारण भी बन जाती है। तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों

Sì, 2 anni.

मैं आपको अच्छा उनके मकान में काफी जगह थी इसलिए सस्ता हो

mighty

की हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। जब तो उनकी बीवी की शरारत है

0: gracia. Debe saber esto. Hijo, usted para mí, por ejemplo, está para mí, yo para casa. Lekin ye tasveer is deed ke muqable mein kuch na thi. Bakri kya kaam dene mein biwi ne socha isse kahin nazar na lag jaye, isliye usse khane ke liye ek gilas taiyar hua. Iski gardan mein neele chini ke daanon ka ek mala pehnaya gaya. Ghar mein jo kuch jhootha bachcha devi ji khud jaakar usse khila di. Lekin ek hi waqt mein deed ki matra कम होने लगी, जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: सर ऐसा है, देहात की बकरी है, जमींदार की बेदरे गनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती। यहाँ बंधे बंधे धूप कम हो जाए तब तक जो नहीं, इसे जरा हिला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को पहचाने कौन और कहाँ, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकल कर खेत और बागों चार घंटे दो घंटे पहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं उसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग बात से निकलिए तो कच्चियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काफी पे तय कर लिया, मगर इसकी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में इसके खास बढ़त नहीं हुई। ईमान ही नहीं सकता कि खिदमतदारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जरूरी काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित मुझे भी गाय चराते थे, कौन कह सकता है कि उस जंगल में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है, जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी खटक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था, घर से तो ले जाए लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकल कर खेतों की सैर करे। वो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई आजादी नहीं है इसे वो शायद नहीं समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। राजसी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चलेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए, आज तो हमने आपका लिहाज किया। लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे नहीं तो कानी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
3: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, पूरी बकरिया तो भैया का बताया हमारे खेत में ही घुस गई, सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भगनी बैठी है, यहाँ कोई तुम्हारा बदल नहीं है। हाँ हकीम होंगे अपने घर के होंगे। देखो बाबू अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला है

0: Actually, आसान से मैंने बता दिया। लगे उनके साथ में गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती, क्योंकि ये लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
1: खिदमत गार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
2: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
1: मैंने कहा उनसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देख के रहा करो कि किसी खेत में न जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
2: जैसे मैं बकरी नहीं चरा सकता, साहब कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
1: आखिर मैंने उस शाम को उसे बाद में चला लाने का फैसला किया। इतने जरा के काम के लिए नया आदमी रखना मेरी है कि कहना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाद में जा पहुंचा। जानों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पड़ी थी, मेरे दलेर हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी। मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाए तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से, पेड़ों से पेड़ों को बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा कि एक बार बाग के लगे से पत्तियां पर मालिक ने शोर मचाया तो उसके परिवार की मेहनत कर लेंगे, हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या लिया जाएगा। हिमाचल एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मान लाया, उसने एक आम को बांधा और शाम को बकरी के साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काशी इस तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ के देख कर बोला,

Casa da minha família está panicada.

है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1992 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11

0: विश्वास द्वारा मान्य कुछ था, वरना आज भी हमारी पुचेरिया या हमारी मित्र आती बरसों से है उनसे। अगर हम इतनी दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करते हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे लगता है कि हम आपकी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ रही हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई है तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चलते हैं, स्कूल कॉलेज नौकरी आसपास में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सक्षम सहूलियत है। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जो है मित्रों से जुड़ रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बातें जो आज के हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली है, व्हाट्सएप या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं पुराने पुराने।
1: सही बात है, कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया है, आप कहाँ रहते हैं, वही मंदाकिनी है, हमने पढ़ा करती थी तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी है ना, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है,
0: कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ गया तो समझ लीजिए आप भी सब कुछ
1: समझ गए। तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती को निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक छोटा लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधन कारक है, रिश्ते स्वयंस्फूर्त है। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, कि रिश्तों से भी मित्र

0: तीन स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं। और इस तरह में अक्सर अपेक्षाएं सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक कहते हैं। पैतृक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारे रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी कहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खुल के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है। जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह खड़े साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को सुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार

हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वही सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है। वही तुलसी बात होती है और ऐसे हमारे साथ और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहाँ दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं लेकिन मित्रों के साथ हम अपने रूप से जुड़े होते हैं। सच्चा देश वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझे। शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा खड़ी सब्जी होती है। बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और लेने के लिए उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है। वहाँ गलतियों पर सोचने और उपदेश देने का डर रहता है लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं।

एक भारतीय शास्त्र थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जब अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी

डॉक्टर ब्रिजेन, कभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी जमशेदपुर से सभा को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत है महफिल प्रोग्राम। महफिल कार्यक्रम में आज चंद्रवर ने वल अमृत गाई है। सबसे पहले

0: नेशनल प्रोग्राम अब इन्हीं खत्म हो गया है। हम आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री आकाशवाणी
0: तो आप मन की बात आकाशवाणी सफल मार्ग
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110000
0: मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हम आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम गुलमोहर गुलमोहर कार्यक्रम में चंद गीत आपके लिए लेकर हम आए हैं। कल का

things that have got my Facebook coverage of part of the team. We have to make a good move to get some channel where it can be. कलाकार है तलब कभी और फिनांस बसाने यह कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जिसका हसरत मोहाली

सिर्फ इसलिए कर रहा है, देखिए आप इसके लाइफ सेटिंग्स

के दूर था, केंद्र से दूर।

because it's your

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज कार्यक्रम के आखिर में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत

yaratmasın diye bir şey kötü.

现在让自己的心，晓得这个事实，将来再说。一些纯粹因着东西在里面，而晓得这个当下的事实是没得一再说。好，我们现在再进入第二个点，今天就是从第二个点分到第三个点开始进行。रात नौ बजे आपके लिए विशेष विशेष कार्यक्रम के लिए छाया गीत का 10 बजे 20 मिनट पर

Şimdi ayrıca

समाचारों के साथ मैं पूनम कृष्णा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वेंकैया

y en mí está tan o

peace.

विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।

आश्रम को बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अंतिम

Mas basta isso aí, né?

0: के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट

it is hard to be friends with.

0: कार्यक्रम में श्रोता हूँ आनंद जी जी गीत सुनिए। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दिलीप साहब, आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जीजी दिशा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं?
2: जी, ये टेक्नोलॉजी में तो सब हाई हो गया। अभी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है। अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं। यहाँ से मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 98 का जो प्रवास है अपना।
1: अच्छा,
2: उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, उसमें सारी बातें मैंने रखी थी और वो डॉक्यूमेंट्री रंगा भवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गई, आज डिजिटल तक आ गए हैं सारे। इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्रामर तो प्रोग्रामर का करो, ऐसी अभी बातें रही हैं। हर एक को हर एक काम करना है, कोई आगे बढ़ता है नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन वीक बाकी ले रहे थे, साफ का प्रॉब्लम था वहाँ। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है, खाना खाने की घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसमें पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी मुंबई के अलग के जो वसई गांव है वहाँ से, उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर, तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये साइंटिस्ट है उसका नंबर मिलेगा क्या? तो ये सुनती उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया, फिर मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया है। उससे पहले वैक्सीन निकाला जो टीम में थी, साइंटिस्ट की टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विद भारती में लगा कोविड के टाइम में, वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की थी वो सारी। फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई यूएस में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो सब गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, उनके जो पिता थे वो लड़की थे वो श्रीलंका में फंस गए थे, उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है वहाँ फंस गई थी और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट सिर्फ फोन से होता था,
1: बहुत जरूरी
2: था। और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था, ग्रुप रिकॉर्डिंग थी।
1: बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहे होंगे उस समय कोविड काल में, जब हम बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे, उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया, बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में।
2: जी हाँ, तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही
1: नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी भावना है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य हैं और चाहे हम कार्यक्रम में विभाग में चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने हैं।
2: हमने गोल्डन जुबली किया था, 7 साल पूरे हुए थे ईद भारती के, तभी एक टीम थी ईद भारती की, जल स्थल और वायु, तो उसमें हमने नेवी बीएसएफ और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो पुरानी विक्रांत वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे, वहाँ बीएसएफ की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज वहाँ हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वहाँ भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहाँ से नहीं चलती थी। तो हमने वहाँ भी कुछ जुगाड़ करके, जैसे जुगाड़ करते हैं रिकॉर्डिंग की थी। वो टाइम के तो किससे अलग ही
1: चलते।
2: एक पहले प्रोग्राम किया था

0: वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी, और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ।
1: दिलीप साहब, कि आप अपनी बातों से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी की दुनिया को कायम किया गया और आज कहाँ पहुँच गई है आकाशवाणी, तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी का जो मोटो है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यूनिटी, इसके आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे 99% लोगों को रीच है आकाशवाणी की, और आज विश्व में तो आपके द्वारा सब जगह जुड़ गई है। और 90 साल में जो देखा जाए ना, एक इंस्टीट्यूट मैच्योर होती है, और पीछे से जो चलते आ रहा है वो आगे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अभी के जो लोग हैं उनके हाथों में है, वो जो गौरव है, वो जो रिस्पेक्ट है अभी तक बरकरार रखना, ये लोगों के हाथ में है। और मुझे लगता है ये लोग बहुत तरीके अच्छी तरह से निभा रहे हैं, और आकाशवाणी का तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये लोगों की भी है। लोगों के मन में अभी तक आकाशवाणी है, तो एक भारती तो है, पॉपुलर तो है ही,
1: जीवन संगीत के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन हर आकाशवाणी से जो है आम जनता जुड़ी भी है और उनके जीवन का एक आधार बन गया है आकाशवाणी।
0: एक भारती एक विशेषता एक है, वो डिफरेंस बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बाकी जो चैनल्स है, प्राइमरी चैनल्स है या लोकल चैनल्स है, उनमें क्या प्रोग्राम की वैरायटी होती है।
1: जी,
0: युवाओं के लिए प्रोग्राम है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या कोई है साइंस स्टूडेंट के लिए है, कृषि प्रोग्राम है, या लोकल कुछ प्रोग्राम है, वो रहते हैं, बहुत वैरायटी है उनके पास। विविध भारती में ऐसे नहीं है। अब ठीक तरह से देखा जाए कि मोनोटोनिक प्रोग्राम है, इंटरव्यू है, थोड़ी बातें होगी, गाना बज गया, तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हुए भी, ये मोनोटोनस प्रोग्राम होते हुए भी, इस बात की पॉपुलरिटी ये है कि यहाँ क्रिएटिविटी है, प्रोग्राम एक ही टाइप का है, इसमें क्रिएटिव बनाना
1: है, प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग है,
0: अलग है
1: जो प्रसारण करता है, जो अधिकारी जो है उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करते हैं, तो एक वेरायटी में आ जाता है। तो आप तकनीकी विभाग में तो थे ही, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक सहायक निदेशक के रूप में भी आपने काम किया है, क्या भूमिका रही सहायक निदेशक के रूप में, आपने आकाशवाणी को किस तरह से दिया?
0: प्रमोशन में मेरी ट्रांसफर हुई वो पश्चिम क्षेत्र में, पूरा पश्चिम क्षेत्र 5 राज्यों का है, उसमें मुझे प्रशासन का काम दिया गया था, और वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन थी स्टेशन और डायरेक्टरेट में, उनके बीच का जो हो जो मिडल मैन रहता है वो जोनल ऑफिस रहता है, और जो यहाँ की बातें दिल्ली तक पहुँचाना, दिल्ली की बातें वहाँ तक पहुँचाना, तो जो पूरा चेन है, चेन बरकरार रखना, और सारी बातें स्टेशन ठीक तरह से करता है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना।
1: लेकिन जैसा कि आपका मन एक कलाकारी मन है, हमने आपकी बातचीत में पाया कि आप कला में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो कला से होते हुए प्रशासन तक जो ये सफर रहा, कैसे मन को समझाया होगा, क्योंकि जब आप यहाँ थे तो आपने तकनीकी विभाग भी संभाला और साथ में प्रोग्राम साइड में भी आपका हस्तक्षेप रहा, लेकिन चूंकि सहायक निदेशक के रूप में प्रशासनिक काम ज्यादा हो गया, उसमें एक अलग रूखापन आ जाता है काम में, और जिम्मेदारी अलग किस्म की आ जाती है, तो किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा?
0: बुरा तो लगा यहाँ से जाते समय, विविध भारती में 33 साल थे, और यहाँ का एक टेबल में केबल, एक इक्विपमेंट सारा मैंने इंस्टॉल किया था, तो थोड़ा लगाव था इससे, तो जाते समय बुरा तो लगा, लेकिन एक था ना, लोकल स्टेशन छोड़ के मैं जा रहा हूँ पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी खुशी भी थी वहाँ काम कर रहा हूँ। प्रशासन का था, मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कठुआ में था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में था,
1: अच्छा,
0: तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, रही 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया था, तो वहाँ प्रशासन का काम था मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग हेड था वहाँ पे, तो वो थोड़ा अनुभव था मुझे, तो थोड़ा अनुभव वहाँ काम आया, तीनों स्टेशन का काम था और ये पूरा जोन का काम था, पूरा क्षेत्र का काम था।
1: मेरे वैसे तो बोलते नहीं, हमने भी आपके बारे में जाना और सुना, तो पता चला कि दलित कुलकर्णी साहब वहाँ पर भी काम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। तो सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग और निजी एफएम चैनल्स के दौर में आकाशवाणी आज भी प्रासंगिक है, जबकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर हजार बातें कही गई,

0: की उपस्थिति एफएम के अलावा पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: एक हिस्सा बता रहा हूँ, ऋषि कपूर जी के हम घर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ऋषि कपूर जी ने उनका अनुभव बताया था
0: जी।
1: जो काफी जाता हूँ मैं प्राइवेट चैनल एफएम चैनल में ट्यून करता हूँ, और उनकी बकवक सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, मैं फिर से वीक बार भी आ जाता हूँ। और वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। जो आकाशवाणी पे मैं कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे मालूम रहता है कि ऋषि कपूर जी ने बताया कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आने वाला है, और उनके गोशों का नाम उनको पता था।
0: अच्छा,
1: तो ये जो बड़े स्टार जो बता रहे हैं वो भी वीर भारती सुन रहे, आकाशवाणी सुन रहे, तो आकाशवाणी तो रहेगी, आकाशवाणी तो डिजिटल आने जो निर्वाचित आए वो हम यहाँ रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगी। और एक अच्छा बदलाव है ये,
0: यानी कोई भी चीजें आती है जैसे जैसे, हमें उसको अपनाना भी होगा और अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आज आकाशवाणी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है जिसके लिए हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का प्रभाव है, आप उसे कैसे देखते हैं?
1: कुछ लोग बोलते हैं कि नया जनरेशन है, जेन जी है, वो आकाशवाणी की तरफ नहीं आ रहा है
0: जी।
1: अभी उनको अपनी तरफ खींचना अभी अपना ही काम है, वो क्या लाइक करते क्या डिसलाइक करते वो देखना पड़ेगा हमें, और उसी तरफ से हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी फॉर एवर रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेगा कि हमने मैग्नेट टेप पे प्रोग्राम बनाए फिर डिलीट हो गए, उसे भी प्रोग्राम के लिए यूज़ किए, ऐसा नहीं होगा। हमारा अभी प्रोग्राम सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और ये बदलाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस लोग पीछे मुड़ते जाते हैं। आज भी गुरु व्यक्ति को लोग याद कर रहे हैं, राजकपूर जी को कर रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनके रिलीज बन रहे हैं, नए गानों के तो रिलीज नहीं बन रहे हैं।
0: और आज भी हम जितने समारोह देखते हैं वहाँ पर पुराने गाने ही गाए जा रहे हैं, पुराना फैशन लौट कर आ रहा है, यानी सब कुछ लौट रहा है।
1: जो प्योरिटी हो तो रही
0: जी, जैसे कि वेदों की ओर लौटो कहा गया, तो ये इसीलिए कहा गया। और ये जो वापस लौटना है ये यही इंगित कर रहा है कि सब कुछ लौटेगा।
1: जी जी,
0: तो दिलीप साहब, आपसे इतनी सारी बातें हमने की है, चलते चलाते आपकी पसंद का गीत हम सुनना चाहेंगे।
1: एक गीत हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो टाइम मल्टीप्लेक्स फैसिलिटी नहीं थी
0: जी,
1: और 40 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग की थी हमने यहाँ पे अपने स्टूडियो में की थी।
0: अच्छा सर,
1: फीमेल कोरस, मेल कोरस, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पार्टिकल थ्री डायरेक्टर थे और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग की और उसका पोस्ट प्रोडक्शन 3 दिन तक चला।
0: अच्छा,
1: तो 40 ट्रैक तक स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहे
0: हैं।
1: तो मिली मिले जी मेल वॉइस थी और बेला शिंदे जी फीमेल वॉइस थी। तो हम रात यहाँ 2-2 बजे तक यहाँ स्टूडियो में रुकते थे, बीच में बाहर जाते कभी 12-1 बजे बाहर जाते थे चाय पीने के लिए। तो वो टाइम साइकिल पे चाय आती थी केटल में, आज भी घूमते हो रात को 12 बजे के बाद। तो हम चाय पीते वापस स्टूडियो में आते थे, वो गाना है मैं हूँ विविध भारती।
0: अरे वाह जी,
1: और वो गोल्डन जुबली के लिए बनाया था लेकिन वो फॉर एवर गाना है, और विविध भारती के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं हूँ विविध
0: भारती। चलिए तो हम सुनते हैं ये गीत जिसे आपने 40 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, और एक अभूतपूर्व कार्य था उस समय का, तो हम भी इस

जोशी की बातचीत।

0: 90 वर्ष के गौरव चली इतिहास के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अमूल्य वक्त विद्यार्थियों को दिया।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे सेवा।

0: से बोले ना, अभी टेम्परेचर है उसे
1: बहुत अच्छा बहू जी,
0: और बीच में एक बार बुखार भी देखे।
1: ओहो, मर गए मर गए, आज भी देर हो गई। अभी तो संतु वंतु को तैयार करना है, यही तो आया उसके साथ ही कहीं रह जाएगी।
0: आया आया, जरा मेरी कलम में स्याही भर देना।
1: ओहो, कहाँ रख दिया?
0: कौन सी गुरु जी?
1: अरे नहीं, धूप का चश्मा।

0: खोलो भैया।
1: हम तो मान नहीं जाएंगे।
0: चलो भैया लेकिन देर हो जाएगी,
1: हो जाने दो, हम तो नहीं जाएंगे।
0: अरे मेकअप से चादर तो हटाओ,
1: तुम पहले दवा हटाओ।
0: अच्छा लो एक घूट दवा का गिलास यहाँ रखती रहे। अब लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगी तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठ कर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे करोगे?
1: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना। हाँ
0: उठो नहीं बुखार बढ़ जाएगा। ए लो बस एक घूट में गट से सारी दवा पी जाओ फिर ले चलेंगे।
1: बड़ी चाय दवा तो हम नहीं पियेंगे।
0: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे? हाँ
1: नहीं, हम तो नहीं पियेंगे।
0: तब फिर ऐसे नहीं।
1: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पियेंगे, मम्मी जो पियेंगे।
0: मम्मी तो डॉक्टर गई है। तीनों भैया मुझे तो बहुत बिगड़ेंगी।
1: तुम्हें डांट पड़ेगी तब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भर्ती है घर गया से।
0: ऐसी आफत कर मारी है, इससे देर में कितना काम हो जाता। मंत्री मंत्री की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
1: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
0: दीदी के इम्तहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर का।
1: अच्छा आया हमें गिलास पकड़ा दो, तुम आँखें बंद करो हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास, दोनों
0: अच्छा,
1: आया।
0: अच्छा लो पकड़ो, एक संभाल के पकड़ लिया। अच्छा लो अब जल्दी से पी जाओ। एक दो
1: नहीं, तुम पहले आँख तो बंद करो।
0: अच्छा लो बंद कर लिया। एक दो फेंक दी सारी दवा। ओहो सारी दवा बेकार गई। जो मन में आया करो हम उठे।

0: पर रोजना
1: तो इससे क्या, छुट्टी तो हमारी है ना।
0: बस मम्मी हमारी भी छुट्टी है।
1: नहीं छुट्टी उठी नहीं, जल्दी से जाओ। आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दो।
0: मम्मी
1: जाओ जाओ जाओ, जाओ। बस जाओ। नहीं गलत बात, एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी, फिर पूछा नहीं जाओगे।
0: नहीं मम्मी आज ना भेजू।
1: जाओ जाओ, राजा बेटे की तरह जल्दी से तैयार करो। आज संतु मंटू के लिए झगड़े सुनने हैं, उनकी दुख बनानी है,

0: से छुट्टी तो दिन भर इनके साथ खर सका, जैसे और कोई काम ही नहीं। आया तुम हमसे भाग चले?
1: क्यों भैया, क्या हुआ?
0: मन नहीं लगता।
1: अच्छा चलो चंटू मंटू को खिलाए खिलते।
0: नहीं आया, वो दोनों गंदे हैं, तेज रोते रहते हैं, उनकी मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती है।
1: तो फिर चलो उठो, लॉन पर गेम खेलें। अब तो कुछ हंसो तो।
0: ए आई हंसी ये आई, नहीं लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
1: तब कहाँ खेलोगे?
0: अम्मी के घर चलो ना।
1: रोज रोज अनिल के घर?
0: तो क्या हुआ, उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती है।
1: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
0: चलो ना,
1: रुको तो।

0: क्या हुआ? उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती है।
1: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे?
0: चलो हाँ।
1: रुको तो, दो तो छोड़ो भैया, फट जाएगी।
0: तो खड़ी हो फौरन, 1 2।
1: चप्पल तो पहन लेने दो राजा,
0: कोई हम क्या हो गया तुम चप्पल पहन
1: रहे हो? अजीब लगता है, बस बात नहीं से निकले और पूरी कर दो। बहू की आलू की कहीं तो जा सकती है,
0: जरा कह दो राजा भैया, थोड़ी देर में चलेंगे।
1: जब देखो अनिल की यहाँ बस हो गई घंटों की छुट्टी, एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते, ऊपर से बहू जी नाराज होती है तो संतू मंजू का काम ठीक से नहीं करती है। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे, मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा, आओ अब घर चले।
0: तुम नहीं जाए थोड़ा सा और खेलू,
1: फिर कल खेलना।
0: देखो आए आओ तो समझती हूँ, इसका घर बन गया जरा सा बताओ फिर चलती है।
1: शाम हो गई है, गीली मिट्टी से बहुत खेल करो तो सर्दी लग जाएगी।
0: शीशे का दरवाजा बना लो, इसे मानती हूँ और तो दबा करेगी।
1: राजा भैया
0: ओहो आया मानती सुन, अच्छा इधर आओ,
1: आओ ना आओ सुनो, यहाँ तो गीला है।
0: सिर्फ जरा सा तो पानी है, डरती हो, आओ ना इधर आओ बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
1: मिट्टी का ढेर है ये तो।
0: हाँ आया तुम इतना नहीं समझती हो,
1: तो और क्या है?
0: आया ये मकान है, घर है, समझी?
1: तो काम फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो, जाओ हम बोलेंगे नहीं।

0: सब तो खुला है, इसमें आया तो ताला थोड़े ही पड़ेगा, इतना सब खुला रखोगे?
1: हाँ तभी तो मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा, फिर तो कोई हमें नहीं रोकेगा।
0: इसके से मकान में रहेगा कौन? तो
1: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे, मम्मी पापा हम
0: और संतू मंतू दीदी,
1: कोई भी नहीं, कितनी भीड़ हो जाएगी।
0: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
1: तुम्हें तो आए फौरन निकाल देंगे।

बोले तो हम खाएंगे क्या? हमने जान से आया तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो

0: अरे फिर कह तो रहे हैं तुम्हें रख लेंगे संतुमन की के लिए।
1: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
0: नहीं भाई मान जाओ ना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
1: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
0: क्या स्वर्ग? स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं। तुम हमें मार डालोगी?
1: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हैं क्या होगा?
0: हम कुछ भी नहीं जानते। तुम ये तो बताओ तो आज खिलौने होंगे कि नहीं?
1: हाँ हाँ होंगे।
0: आया मम्मी से तो पूछ ले। आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
1: हाँ हाँ।
0: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
1: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
0: करती थी आया, उसकी थक गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं जाती थी, जब से फंटू मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं। इनके मारे तो
1: देखो भैया, स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
0: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
1: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
0: मगर आया एक बात तो बताओ, हम देर से नीचे जमा कर लें

0: तो मम्मी और पास मेरे पास आओ ना।
1: ले लो तुम्हारे पास।
0: अब बताओ मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
1: तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ। चलो बढ़िया से कहानी सुनाओ।
0: नहीं आती अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना तो जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है। मम्मी वाली सुना दो ना।
1: कौन सी बेटा?
0: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी, जब मम्मी आया नहीं थी, वही वाली।
1: वो तो बहुत लंबी थी, उसको याद भी नहीं।
0: याद है याद है, सुना दो नहीं तो हम भी नहीं सुनेंगे। सुना दो मम्मी।
1: अच्छा जल्दी से बोलो। तो आंखें मुझे
0: ये
1: एक ही फोन करी, एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में।

0: अच्छा तो मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
1: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
0: नहीं, रोते नहीं बेटे, क्या बात है?

और निर्देशन दिया दुर्गा मेहरोत्रा ने।

देश 19.94 लाख मेट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की

started when I worked out

0: जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आपकी जगत की खबरों के साथ है सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 77,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 30,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डॉलर के मुकाबले 84 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 93.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।

0: किस गरीबी भर जाए। दस रुपये कार्यक्रम आपके लिए मन की बात
1: सुझाव देंगे जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लेगा।
0: यदि आप मामले में

vivido el tema.

उनको स्वयं वहां भेजना है काम काज पर। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाएगा एक एक छात्र में जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक प्रेमन होश खाने होना शुरू होता है। तो ये जितनी बड़ी भारी साइंस है, अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं है। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि हमको जो जर्रा भी हमारे

0: भी मानो तो लाइट भी है, सभी चार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प होते हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूर्य

जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी ही एकांत लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो बनाते करते थे और इसकी कंपटीशन थी। और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो भिक्षु एक्शन का उसी वक्त होने का। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर कोरमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे। तो ये आदर्श मेरे सामने, फिर पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो

मेरी चंद्रिका जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक संस्कृत में लिखा है, उसका नाम था सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक कदर चलता है। और इस तरह मेरी गुरु महिलानी से कहता हूँ, वो मेरा हैंडसेट नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पर बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने कहा ये क्या रोल है, मैंने छोटा है अच्छा, मैंने कहा मुझे दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था। और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में

movie

truth is,

में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकू भाई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नाटक सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश तो दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है अभी कुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता लोग, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं, मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी का, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखते जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वान की जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आए। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो

0: आ गया, हसमुख आ गया, आ गया हसमुख। अरे हसमुख हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होली को कौन डाल सकता है, लेकिन तुझे नुकसान से घबराना नहीं है। हाँ मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आज ही तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
1: अमरापुर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके द्वारा अभिनय

somebody thought this was great.

сильно вышел. Я думаю, что...

big

हमारी आज की ये सभा कल प्रातः 5:55 में हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।